0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: சகோதர உறவு, திருமணத்திற்கு முன், திருமணத்திற்கு பின், இதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம வணக்கம் தோழியில் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் இல்லையா. நிறைய தோழிகள் வந்து அவங்களுடைய சகோதர பாசம் வந்து இன்னும் மாறாமல் அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது, அதை சரி பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம பதிவை போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, அதை படிக்கலாம்.

0: தொடர்புக்கு 8220542555.
1: सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी, डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: चिक, चिक, चिक, चिक, खिच, पिच, खिच, पिच।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। चिक, चिक, चिक,
1: चिक। लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा?
1: जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल, जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक